सच बसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया बेच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया।

सिर्फ सवालियों जिन कीती सो पार पे कहो नानक करते किया बता जो किछ कर

जोग जोग फेर बिटा ये ज्ञानी बुझ खता के साजुग रस संतोका धर्म करत बागो त्रिता रथ जत का जो रगरथ बाहु द्वापर रथ पैका सात गरथ बाहु

ब्राह्मण को कर लाभ गोबर तर न जाई तो टिटका तै जप माली धार मिले छा खाई अंतर पूजा पढ़े कते बा संयम तुरका पाई।

जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार, जंत बेचारा क्या करे, चले बजावन हार। कबीर

जुगो जुग अटल, दीन दुनी दे मालक, सर्व रे कायनात दे सांझ रहवर, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरद्वारा दुख निवारण साहिब पावन अस्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वाले सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है, जो अपने पावन चरणा कमलों पास जुड़ के बैठन का सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश किया है। आओ गुरु प्यार वाले जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां चल रही ने और आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण कर दियां हो, उन्हां चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तो पहला सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन, अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण, सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द और गुरबाणी दी विचार साहिब आप करवा लैन। आप सरबत संगत असीस बख्शो, कोई रसना वांझी ना रहे, दोवें हथ जोड़ अपनिया मन बिरतियां एकागर करदियां लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी, अदब सहित सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री

सिखान सिखी दान केस दान रक्त दान विवेक दान विस्थाह दान प्रोत्साह दान दान सरदान नाम दान श्री अमृत सजियां दर्शन स्नान।

पवित्र हजूरी अंदर पंचम कड़ा प्रसाद जी देख सके हाजिर है। धर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत विच वरतौंदी।

बलिहार कुदरत वस्या त्रांतना जाय लख रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिफत सवाल जिन की सो पार पिया।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਧ ਵਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੜ ਆਪ ਤੇ ਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਤ ਰਾਗੂ ਜਿਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵੜੇਰੇ ਜਨਾਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗੂ ਜਿਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊਡੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈਂ ਕੌਂਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨੇ ਮਹੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ
ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पर प्रिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पर प्रिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्ह पारा सब त्या वहें सब त्या वहें तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व नरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहें हर ते आवहें तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पाए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत बनार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर निके अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तब तपहें जपहें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडे अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हो पाही रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुग वाया
तुदया विछोड़या आ मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ में दूजा कोई नाही जी जन सब तेरा खेर वियोग मिल विछुड़या संयोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद विन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखे है जाने है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ भैरे निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंकजो महो पग नहीं चले हम दिखा तह डूरे मन एक न चेतस मूड मना हर बिसर तेरे गुण गलया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म भया प्रणमत नानक तिनकी शरणा जैन तू नाही विसरया आसा महला पंजवा भई परावत मानुख दे होरिया गोविंद मिलन की हे तेरी बरिया अवर काज तेरा किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम श्रण जाम लाग पव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध न जन्ने आहर राया कोहु नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्ने आहर राया कोहु नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काबो हो आप हाथ दे मोहे बचावो हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सवै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शतर हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करी हो रक्षा राख लेओ मोहे राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए
ब्रह्मा बपथरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन पर काशा सकल काल का किया तमाशा जमन का जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैन जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी दे कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्टि कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने कट कट के पढ़ पढ़ की जन्ने जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब आकर्ख कर तो हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद पेद अर आलम ड्रंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिर अनाद असंभव ताका मूड़ उचारत पिता जाको पेव ना पावत बिद्दा ताको कृपाहण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहित सदाशिव ड्रंकार का चीनत न भिव आप अपनी बुद है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आजुग स्वरूप स्वयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस्तुजे तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार दे है ताकि काल निकट नह है रक्षा हुए ताही सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल्ला कृपा दृष्ट तन जहे न हरेओ ताकि ताप तन कमय हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शहाशवय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते

तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर ठोर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठोर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तर नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्य हो सिमृत शास्त्र वेद सभाय बहु वेद कहें हम एक ना जान्यो सिरियस पा

दोहरा सगल द्वार को छड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाजस गोविंदास तोहार सगल द्वार को छड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाजस गोविंदास तोहार राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सिति मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गलना संब्रत स्वामी सो क्यों मनो बिसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरे घर दां तेरे सब किछ है जिस दे हैं सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैना भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जैना इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनहो संतो शब्द तरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होआ तित कर अनहद बाजे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर बुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर बुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो
अमृति नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे अदारो, जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एहे बस्त तजी नहें जाई, नित नित रख और तारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पायोई। तरस पया बेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन थीवे हरिया। तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया।

नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नहीं। साजन आए पुठे कर माही। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाह प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरु इतिहासक विचार, धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है, मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे होए निमाणे जे होके समर्थ सतगुरु जी दे पावन चरणां च जुड़न दा यतन करिए। सभना दियां हाजरियां गुरु पातशाह जी दे पावन चरणां विच लग जाण। आप जी रोजाना इस अस्थान तों जो लड़ीवार इतिहास पिछले दिनां तों सरवण करदे आ रहे सी, कुछ दिनां तों आप जी ने गुरमत विचारां सरवण कीतियां ने। इस अस्थान ते जो श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे राहीं कवि संतोख सिंह जी दे द्वारा दशमेश पिता बादशाह दरवेश शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पावन इतिहास चल रहा है, आओ अज फिर उस इतिहास की लड़ी नूं जोड़दिया होया गुरु महाराज के चरणों के विच जुड़न का यतन करिए। पिछले दिनों के विच आप जी ने इतिहास सरवण किया सी, आनंदपुर साहिब दी पावन धरती गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आनंदां दी पुरी विच आनंद वरता रहे हन, जिथे रब्बी बाणी दे प्रवाह चलदे ने उथे अमृत संचार भी हो रहा है। खंडे दी पहल तैयार हो रही है और अनंत प्राणी आके गुरु महाराज के चरणों के विच खंडे की पहुल लैके सिंह और सिंघणियां सज रहे ने। भाई साहब भाई नंद लाल जी जिन्हां दा इतिहास दे विच बहुत ही सुनहरी अखरां दे नाल नाम लिखिया है और जिन्हां ने गुरु कलगीधर पातशाह जी दे नाल अथाह प्रेम किया है, वह प्रेम जो शब्दों के राही बयान नहीं किया जा सकता। ये गुरु कलगीधर पातशाह नाल प्रेम किस तरह बनिया, औरंगजेब दे वल्लों शाही ठाठ बाठ शाही पहरावा शाही भोजन दा प्रबंध भाई नंद लाल जी वास्ते हुंदा है, क्योंकि वह बहादुर शाह नूं फारसी जिहड़ा है वह पढ़ाउंदे ने, फारसी दे विच बड़े ही माहिर ने भाई नंद लाल जी, पर अंदर एक खिच सी कि किते पूरा गुरु मिल जाए, ओ गुरु जो मैनू परमात्मा दे नाल जोड़ देवे, जिहड़ा परमेश्वर दे नाल मिला देवे। अक्सर सुनिया सी गुरु कलगीधर पातशाह जी बारे, पर एक दिन मन दे विच ऐसी तांग बन गई, मन लोचदा है गुरु कलगीधर पातशाह जी दे दर्शन करन वास्ते।
ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਦੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਟ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਬਸੀਟ ਹੈ ਜੋ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੋ ਸਹਿਬਾਨ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ।

रोज कुरान शरीफ दे विचों दी आयतां पढ़िया जांदियां ने। अज जड़ी आयत पढ़ी सी उहदे अर्थ किसे नूं भी नहीं आ रहे ने। चोटी दे मुलाने बैठे हुए आ विद्वान पर किसे

की जंगम ते अन तरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जाने कब कल।

गावे जनकाद जुगत जोगेसर, गावे जनकाद जुगत जोगेसर, हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साध सिदा देख, मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडल वे, भगत भाए रस जाने कब कल सुजा।

प्रहलाद आदि जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो गावे जमदगन परशुरामेश्वर कर कुठार रग तेज हरे ओ उदो क्रूर बिदर गुण गावे सर्वातम जिन जाने ओ कब कल सोजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माने ओ कब कल सोजस गावो।

सहज आत्म रंग मण जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने सुख देओ परिखियत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सो जस नानक गुर नित नव तन जग छायो गुण गावे पायाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचार ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुकम सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण समझाने ओ जप कल

मीत सुत पाई ताहू तेले रखी नरारी तावन पावन कूर कमावन एह विद करत औद तन जारी करम तरम संजम सुच नेमा चंचल संग सगल विदहारी पास पंखी।

प्राण पत सारी, खान पान मीठ रस भोजन, अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उदर, होर माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसर, रस

सदा सुख मन वसै, दुख संसार है खोवे। गुर नव निद दरियाओ, जन्म हम कालख तोवे। सो कहो टल गुर सेविए, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन पर से गुरु के जन्म।

कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधिक तेतीस कोर तिरकीम न परिए ब्रह्मा दिक्षण काद सेख।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक सरबे कायनात दे सांझे रहबर जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त तथा वक्त दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर सम्राथ गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान साध संगत जी आप जी वडभागे हो जो अमृत वेले दे दीवाना अंदर हाजरियां भर के अपना जीवन सफल कर रहे हो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का अज का पावन मुखवाक जैत श्री रागंदर पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी संगीत दे तीसरे घर विच बख्शिश करते हैं जो सतगुरु जी की बाणी पावन अंग 700 उपर सुभायमान है। सतगुरु जी कृपा करना अपने हुक्म अनुसार जीवन जीण दी समर्था सूझ बख्शन जी। आओ अज दे एहे पावन बचन अपने हिरदे अंदर वसाउण दा यतन करिए। जैत श्री महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जग मीत

नत्रि कर्म लगाए पार को लुचर का चक्की चक थाल वार रोले बहुत आनंत लाटू मधानियन का पंखे पौंदे लैना